तहीं प्रकाश हमारा पहरो, पटना शहर बिखे पौलेव, तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हैं उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछारो, हमरे सब बैरियन संघारो। जड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आखदे ने जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

अस्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपन पर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरत जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाना है हर गुण सद ही आख वखाना है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड पहिले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साध न जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा सरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संगरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरय मरन काल का त्रास निवरय हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जजू करे हो रच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो।

पद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे ओ हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छहा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दहले हो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जब पये दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अडिल सुने गुंग जो याहे सोरस ना पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह। हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस फुन तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक न जान्यो। सिरियस पान कृपा तुमरी कर,
मैं न कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी।

का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी न जाई नित नित रखियोर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नान।

तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरेया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहे ओथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौ जल बिखम असगा हो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगह पाई ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनोह ना विसारियन साध जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दोष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सूत्र ताई तुम पे हुए सो आ गया था।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहिपति पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय फरंकट गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर्ण उन्हें त्यावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। गुरु महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्होंने नाम जपया वंड छकिया देख जलाई तेग वाहे देख कंडेट की दत्तना प्यारे से त्यारे की कमाई दत्ते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सीख दिते बंद बंद करवाए खोपरियां लुहाइया चरखियां से चले आर न चराए गए सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे सत्संग निभाया तिना भी कमाई दत्ते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त सतगुरुद्वार दत्ते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चित आवण का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तार छाए देव ते की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत साहब दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु की बिनवाज पंथ सदा साहिब दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़िया गलत सरदार सेवा समाज सदा अपने खालसा जी बख्शो हे रोटियां दी ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तो तार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता निरास। हे गिवनवास जी आपके चरण कमला अरदास आपकी बख्शिश हुई आपके चरण पितर प्रमाणी सुखमी साध संपूर्ण पाठ दिता उपरंत ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधर रहरा साज पाठ की कृपा करो होइया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदान की कृपा करो जी अगो तो शोध के पित्र बाणी टाणी बार बुद्धि बख्शा करो। महाराज इस खुशी में आप दख्शिया दातों में पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर हादर ने दतार आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद साह संगत की रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्श करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश विदेश रखा बख्शिश करो जी। गुरु गोबिंद महाराज कृपा दतार आप दख्शिया दातों की लंघना तुर सेवा प्रवान करो गोबिंद महाराज आप देना सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बखता करो गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वे तो लैके दर से आई सब संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब नवाज आग जा के सेवादार काका सनी सिंह बैंस के काम काज की चढ़ करा वास्ते कामयाबी वास्ते बेनती करते आज परिवार वालों 101 डॉलर आप जाने बैठक ने प्रवान दतार बख्शिश करो काका सनी सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो उन्होंने कारोबार च वाध बख्शो चाढ़ी कला बख्शो सनी सिंह अपने कारोबार कामयाबी बख्श करके चरण धनवादी बनाओ और कारोबार चाढ़ी कला बख्श करो जी। गुरु राज कमाइया सफल करो दाते लाजमक दतार जो कृपा करो खालसा पंथ से कौम एकता सुभाग प्यार की बख्शिश करके सच अंदोज दाल बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शिया की बात करो जी। गरीब नवाज दूर दराकों में बैठी लाइव कर सकिए शर्म कर रही सारी संगत हाजिया प्रमाण करो घड़ियां लिख लाओ आपने बख्शे गिरी संगत उद बख्शे संगत आपके चरण धनवाद करने शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कर चरण प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सफल करो कार्य वार सब संगत दिया शुभकामना वास्तव पूरी करो जी। गुरु जी महाराज कृपा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माई बख्शो पेदर गुरुनामी बख्शा के उपरंत आज दे शाम दे कथा की बार रमता वास्ते आगे बख्शो रहते का सार के चरण दिनों आदि बनाओ शोधे दे पुत्र सवाल निकलवा दे तार सही प्यारे मेरे जिले मेरे आपका नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ।

संसार विकार संसीम है तरियो ब्रह्म ज्ञानी निसे जगाए भी आवे इहु रास अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बाहर न होए गो फेरा।

0: No, yo no tengo que poner aquí. Para que salga. Eso no, un tal regidor, por favor. Ustedes son en Shakti.
1: ठीक है तो कर लेंगे सर मैं कर लूँ जी लगे तो ठीक जी ठीक सुबह दस ना सुबह ठीक बात है।
0: हाँ, चलो भेज लेंगे।

आप अडोल न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुण है अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एहो विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मान, करण करावन हार प्रभ जान, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात, तिस भावे ता करे विस्तार, तिस भावे ता एक ओंकार, अनेक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मद अलिप तोर है, जो किश कहना सो आपे कहै, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे तां लए समाए, इसते होए सुना ही बुरा, उरै कहो किने कश करा, आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच,

कवन कवन तिथ कवन वार कवन सुरुति माओ कवन जित हुआ आकार वे न पाई अपंड तीजे हुए लिख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान तित वार न जोगी जाने रुत माओ न कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई क्यों करया का क्यों सलाए क्यों वरनी क्यों जाना नानक अखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जी को आपो जाने कह ज्ञान सो है पाताला पातालक आगासा आगा सूड़ कूड़ पालत के वेद कैनिक वास सहस अठार है कहन कतेबा असलो एक तात लिखा हुए तो लिखी है लिखे हुए विनाशो नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही ती सुरत न पाईया नदियां अतः वाह पवै समुद न जानी है समुद सा सुल्तान ग्रह सिती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जित मनु न विसर है अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण किते बिललाए ताकि अंत न पाए जाए इहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब उच्चा था ऊचे उपर उच्चा न होए उड़ उच्चा हुए कोई तिस उचे को जाने सोए जीवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तुमाए किते मंगे जूत अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप टुटे विकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरखा ही खाहे किते अदू भूख सद मार ए पेदा तेरी दातार बंद कलासी भाणा होए हो राख न सकै कोई जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितिया मु खाए आपे जाने आपे दिया कैसे फेके के जिसनु बख्शे शिवशाला नानक पातशाही पातशाह हो अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला बैमुल जाहे अमुल पाए मुला सुमाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शी समुग अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान मुलो मुला क्या ना जाए आख आख रहे लिबलाए आखे वेद पाठ पुराण आखह पढ़े करह वख्यान आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोविंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह कीते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव कीते आखह आखण पाए कीते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे हित आख न सकह के जीवड़ भाव तिवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावार गावार सो दर की हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा किते वावन हारे किते राग परिश्यो कही अन किते गावन हारे गाव है तोहनु पौन पानी बैसंतर गाव है राजा धर्म दुवारे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गाव है इंदे दर्शन बैठे देव ते आदर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पे आले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जूद महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कार कर रखे तारे शीत दिनों गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीहो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिष्टी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पातशाह नानक रहन रजाई बंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करै बिभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत तै जग जीत आदेश सै आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक वेश भुगत गया।

भंडारण कटकड़वा जह नाद आप नाथ नाथी सब जा कीरे सुदबरा साथ संजोग जोग दे कार चिलाव है लेखे आवह भाग आदेश साध अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश हिका माई जुगत वे आई तिन चेले परवाणु एक संसारिक भंडारिक लाए दीवाणु जुगत सुभाव है तिवे चिलाव है जीव हो वह फरमानु ओह वेख उन्हें नजर न आवे बहुता एहु वडान आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सुखा वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश एक दू जी भाव लख हो हे लख हो वै लख वीश लख लगे डाया की है एक नाम जगदीश ए तराह पथ पवड़िया चढ़िया हो यकीस सुन गल्ला आकाश की किटाया इरीश नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काया को कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते भरमे घाड़त घड़ी यह रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चन सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रतन समुंद केतिया कहानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाटत घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरं सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे और न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाए ताके रूप न कथने जाहे नाओ हिमरे न ठगे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लोक रह अनन सचा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जी हुकुम तिवै त्रिकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाउ खलागन तपताओ भांडा पमृत तटाल घड़िया सब सच्ची टकसार जिन को नदर करम तिनकार।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤੁਐ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਵੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੂਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਭੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਧੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਰਨ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਅਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ, ਅਝੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਧੰਧ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਚੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਅਵਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰੇਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੇ, ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ, ਅਭੇਕੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ, ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾਨੇ, ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੰਪਰਮ ਰੂਪੇ,
नमो योग योगेशं परम सिद्धे नमो राज राजेशं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भेखीय परमी अपोघी अपुगते नमो योग योगेशं परम युगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दूर दर दंगा गंगो गहरता परम परम परमेश्वर प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अचिदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया चंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकीजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारित सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजे अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हूं न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सुदय मानता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जान नहीं जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पास हो जानी के जेव तात्मात न जा जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के बिकह जग जापी जे जाप आदेव नाद मूर्त थाप्यो सवै जे ताप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं पवगण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अभेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दायक काम आप रूपम एक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजनाद रूप असूत अंग ही न पंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नित भाकत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही व चित मदपार छन्त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भांग उपमा नांगन भव प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल अनपूतंग अभापंग अतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्वत प्रचंड
मित गत अखंडालिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परना डंड बाडे चाचरी चंतव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृश्य भगवती चंद प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज भिषय के आगंज कर्मय के आज भर मैं के आज लुक है के आदित सुख के अवतूत बरने के बेभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसुक बरने के सर्व अपरन के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बरमंग स्वरूप है के अनुपह अनूप है के आद देव है के आप अपिव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रेहा के पाक वे है के गय बुल गय वह कि अफूल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजुक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र माने है कि सर्वत्र दाने है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेकी कि सर्वत्र पेकी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली मैं के परमंग फही मैं के आकल अलाम मैं के साहिब कलाम मैं कि हुसनल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम मैं सलीकत मुदा मैं गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तुम्मा मैं रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम मैं रजायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अपेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है पितृमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सुदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है।

उदास है, अंध है, बंद है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलिख है, अपीख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट चंद्र प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हरता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणु, सर्वंग त्राणु, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंतव प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमातंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभाह अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रूसी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल तल मुदाम अंशिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल तल मंड दिश विश पांडु जल तल महंत दिश विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अनरंज बात अन टुट भंडार अंडट अपारा डीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण जग के करने मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है थप्पा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू नास का स्वगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गा अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग वैभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग वैभूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पुगते सोयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते

सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वय प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदातिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपाऊ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को ना गई पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिनु अंत को अंत के धाम सिधारे।

और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मूरछा निज कर दै करिये, सब वैरन को आसंगरिये। पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख ले हो महि राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो। आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एके की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद कर्क करा करतारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड़ो चारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपान अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिर सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पै शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे आस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि शुभ काला, दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताव तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छा छव सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम त्यारु कहा, जिन नर नाम तिहारु कहा। दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत, मैं शरण तिहारी। आप हाथ दै लियो उबारी, सर्व ठौर मोह सहाय। दुष्ट दुख ते लियो बचाई,
कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल विकसकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को क्षय करता श्री अस तुझ जप दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो या सुरस न पावे सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय अर्ध सहसपुन तीन कही जय भादर सुदिष्ट मीरवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सोईया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो

सुखी गृह मंदिर बनया। हर गाऊ मंगल नित सकिए, सोग दुख न व्यापे। गुरु चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभाप मिलया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया सुजग मैं आय कै, क्या तुद कर्म कमाया। कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जो तरी। हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया, यो भी संसार तुम देख दे। हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा, वेखा हर कह। हर बिनवर न कोई, कह नानक के नेत्र अंध से। सतगुर मिलया दिव दृष्ट हुई। श्रवण हो मेरे हो, सचै सुन नैनो पठाए। सचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए। सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ। रसना रस मानी, सचलक विडानी। ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो। सचै सुन नैनो पठाए, हार जीव गुफा अंदर रख कै। बाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पाउ। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भाव निकना, दसवां द्वार दिखाया। तैन एक रूप नाव नव निध, तिस्तांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर रख कह। वाजा पवन बजाया, यो साचा सोहिला। साचे घर गावहु, गावहु ता सोहिला घर साचे। जिथे सदा सच त्या वहे, सचो त्या वहे। जा तुद भावे, गुरमुख जिना बुझावे। यो सच सबना का खसम, जिस बख्शे सो जिन पावे। कह नानक सच सोहेला, सचे घर गावे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आ भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आ भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते होए सो

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे

तौ विद नेकी खटानी, जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहुतेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मूल कहीरा,

परम सम्मान जो गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ अमृतमयी बाणी श्री आसा दीवार दे कीर्तन आप जी ने प्यार सहित सरवण किए हैं। हुण समा हो रहा है अज दे मुख वाक दी विचार दा सत्कार योग ज्ञानी नवनीत सिंह जी आप जी नूं अज दे मुख वाक दी विचार सरवण कराउणगे। फुलां दी खिमां बख्शदे होए फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

जो तू दे सो कह स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, तनासरी महला पंजवां, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नी की खटानी। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा,

भाव। अमृत नाम निर्मूलक हीरा, गुर दीनो मंतानी, डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी।

गुर कियो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो प्रारंभ हुए दीवाना विच हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप वडभागी हो जो श्रद्धा भावना प्रीत अदब सहित निता प्रति गुरु दरबार दी हाजरी भर के गुरुदेव जी दियां असीसां खुशियां प्राप्त करदे हो। बहुत प्यार नाल गुरु चरणा विच बैठ के आप जिया ने आसा की वार दा कीर्तन भाई सह भाई सतनाम सिंह जी तिना दे जत्थे पासों सरवन कीता है। उपरंत पावन पवित्र श्री मुख वाक जो गुरुदेव जी ने अज तख्तां ते प्रकाशमान होकर के बख्शिश कीता है, उस पावन मुख वाक दे पाठ नूं आप जी ने सरवन कीता है। गुरु कृपा सदका नितां प्रति आपां अमृत वेले दे दीवाना विच सतगुरां दे बख्शिश कीते हुए रब्बी वाक दी विचार करदे हां। ये पावन शब्द तनासरी राग अंदर पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव दातार जी दे श्री मुख तो उचारण कीता होया सतगुरां दे पावन अंग 671 ते 72 उपर सुभायमान है। सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे इस पावन पवित्र शब्द दी आपां विचार करनी है। शब्द दा जो मूल भाव है, केंद्री भाव है, ओही है कि पंचम पातशाह जी कृपा करदे ने कि ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे दर घर उत्ते, दर घर अंदर जां परमेश्वर दे पास अंतर आत्मा तो उठी हुई अरदास, जिंद दी अरदास ही प्रवान हुंदी है, कबूल हुंदी है, सुनी जांदी है। अंतर आत्मा तो जदों कोई पुकार नहीं करदा, अंदरों जिदे अंदर कोई पुकार करन दी भुख नहीं, प्रीत नहीं, प्यार नहीं, वो बाहरों कितने भी कर्म, कितने भी साधन, कितने भी कई तरह दे यतन करी जाए, वो सारे बेअर्थ ने। प्रीत तो बिना, तुर आत्मे दे तालमेल तो बिना संसार दे विच बाकी जितने भी मनुख कर्म करदा है वो कर्मा राही परमात्मा दा प्यार नहीं मिलदा, परमेश्वर दी प्रीति नहीं मिलदी। वो परमात्मा जो हिरदे तो पुकारदा है उदा ही बन जांदा है, क्योंकि परमेश्वर साडे हर एक जीव दा दाता है, संसार दा सृष्टि दा दाता है। उन्हें सब कुछ साजिया, बनाया, ढाया, सवारिया है। इस करके जिन्हों गुरु बख्शिश सदका, गुरु कृपा सदका, गुरु मंत्र द्वारा यह सोझी आ जाती है, फिर उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी विचार बदल जाती है, उसके जीवन विचों दुख सुख जिहड़े ने वो गत कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, उसका मन दृढ़ ते अस्थिर हो जाता है। वो परमात्मा की कृपा नाल, नाम दे नाल, सच्चे नाम दे नाल अपने हिरदे नूं ऐसा बन लैंदा है, ऐसा अडिग कर लैंदा है कि दुनिया की कोई ताकत उस सिख नूं, भगत नूं, परमेश्वर दे प्यारे गुरमुख नूं फिर डुला नहीं सकती, जिदी पुकार, जिदी आवाज, जिदी गल सिद्धी अपने परमात्मा नाल हो जाती। ये पावन शब्द का भाव है। आओ गुरु कृपा सदका आपां समुचे शब्द नूं वाचन दा यतन करांगे। विचारां दी आरंभता तो पहला रसना नूं पवित्र कर दे हो, प्यार सहित आखो जी।

शासन है जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वासी बोधि पाची दसवीं प्रथम भगवती समरकाय गुरु नानक लईते आए फिर अंकित करते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण निधे सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पातशी के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दाते अंतर के खालसा बोलो जी वाहे गुरु महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया मन चख्या दे चलाई तेग वाहे देख निड़की दतना प्यार त्यार की कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाइया चरखिया चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाए तिना नहीं कमाई दाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु नाम चेता वे चित आवन का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तचार्य आयत देख देख की फतेह बिरद की पैच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन निशनान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नी मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदस्य आज दता जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब ढोर गुरुद्वारे गुरुताम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की राहत सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया न्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ बता दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे दाने रास हे गिरवाज जी आप जी के चन का उन्होंने अरदास बीते आपने बख्शिश की है अमृत वेरे प्रकाशमान हुए संगतान दर्शन दर देख निहाल दता जी बेहद बाणिया के पाठ दता जी ऐस वे आपके चरण आप दर कर सकता है गिरवाज जी राजी संघा ने पुत्र गुरबाणी अरसा की वार संपूर्ण कीर्तन कीते ने उपरांत विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा विचार की कृपा करो हो भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड पुराण गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप जी दख्शिया दाता पितृग्राम शाह जी देगा तैयार करे हादन दतार आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रुगा का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गुरु मनवाज आप जी बखिया दाता जो लग रहा है तुर से वाली प्रवान कर दी दतार अमृत वेत लैके दरते आई साफ संगत दर प्रवान करो कड़िया ने खिलाओ संगत का दर देते फिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी बनाई कृपा करो खास अपन सिख कौम एकता सुभाग प्यार की बख्शी करके सच नोज दान बख्शो चैनल ना जोड़ो करवाण का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शी का निपालता करो जी। गुरु जी बनवाई कृपा करो दूर दारिका बैठी लाइव तकी सवन करियां सारी संगत हाल जी प्रवान करो कड़िया ले खिलाओ सतारा आपने बख्श की संगत रुद बख्शे संगत आप चैनल धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद माया ऑनलाइन गुरु कार गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कारी चैनल प्रवान करो बख्शा आप कमाइया सफल करो कार अजार सब संगत शुभकामना समा पूरी करो जी तार मेहनत कराओ सेवा प्रवान करो पूरा चुका माफी बख्शो पितर गुना बख्शे उपरंत लड़ी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो दतार रहते कार सवार के चैनल तुरंत बनाओ शुद्ध अति पितृ सेवा लैने के बाद दतार से ही प्यारे मेरे जिले में आपका नाम देता है नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल के तभी चलायो सार सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आगे रहे ना ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚਲੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡ

सुख निदान हर अलख स्वामी, जी जंत तेरी सरनाई, नानक नाम मिले वड्याई गौ।

दुख न जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, धन सती दरगह परवानिया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, हम तनवंत भाग।

अगम रूप का मन महथाना, गुर प्रसाद किने विर ले जाना। सहज कथा के अमृत कुंटा, जिस है पराप

छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत् बिचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां।

जो जन पर सो जन परवान, जा कै हृदय वसै भगवान। गौड़ी महल्ला पंजवा। एक स्यों जाका मन राता, विसरी तिसै पराई ताता। बिन गोबिंद ना दिसै कोई, करन करावन करता सोई। रहाउ मनह कमावै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतह न डोलै।

रहाओ। नेत्र संतन का दर्शन पेख, प्रभ अविनाशी मन महलेख। सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मिटाए। चरण कमल ठाकुर।

जो तुद भावे सो ही करना राव सोग हरख मैं आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ भाणा अग्न सागर महाव्यापै माया से शीतल जिन सतगुर पाया राख ले प्रभ राखन हारा कहो नानक जंत विचारा गौड़ी महला पंजवा तुमरी कृपा ते जपिए नाओ तुमरी कृपा ते दर गह थाओ तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोई तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहा तुम मन वसै तो दुख न लागै तुमरी कृपा ते भ्रम भउ भागै

ब्रह्म पूरन जन ओट, तेरी शरण उदरह जन कोट। रहाओ जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे। जो किछ वर

नानक जाकू नदर करे। गौड़ी महला पंजवा हिरदय चरण कमल प्रवतारी, पूरे सतगुरु मिल निस्तारी, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई। मिल साधु हर नाम त्याई, राव दुलभ दे हुई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूर्ण पद पाया, साध संग पै भरम मिटाया, जत कत देखो तत रहा समाए। नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ए लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जो नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जदों इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दुष्ट दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने, दुष्ट दोखियां दा खात्मा किया ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावें अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो। साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साढ़े लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।